करना है हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा या कोई होर एडवांस डिप्लोमा, तो तुसी फोन कर सकते हो 905-399-1810-905-3996-110 विलेज ऑफ इंडिया। शुद्ध शाकाहारी भोजन जानिया पहचानिया नाम पिछले 3 दहाकों तो। तुसी घर दे विच कोई लाइव केटरिंग करवानी है, तुसी इन्हां दा ट्रक हायर कर सकते हो। कोई छोटा मोटा फंक्शन अरेंज करना है, हाल चाहिए तुहानू 100-125 आदमियों के लिए, लाइट साउंड डीजे वगैरह का पूरा इंतजाम, खुली डुली 100-125 गड्डियां की पार्किंग, तुहानू ए सर्विस भी मिल सक

0: Sunfire Radio. Good for your body, mind, and soul.
1: आपका स्वागत है हर संसार में और जुड़िए आत्मा परमात्मा दिव्य दुनिया और बाहर की दुनिया के साथ।
2: आपको अपनी आंखें चेक करवानी है, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, सन ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल जैकोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल, एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-5555 कॉल कीजिए 9054560733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
3: लो जी, तुम्हारी फेर अपना टेस्ट की गल करन लगे हैं, दिल कर रहे हैं ताही तो सिफ्ट करन लगे हैं, जरा सुन के सोने आओ।

0: खेत कंत पुनीत पै गुन गाए दुर्द गया हर नाम ते आए रहा सबनी थाई रव्या आद जुगाद जाता मन पता गुर प्रसाद न होए संता गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब खाई उठे सब सुख पाए सतगुर टूटे
1: नए कार लगवाने हैं। अगर आप स्टोनी क्रीक में रहते हैं हैमिल्टन में आपको कार की रिपेयर करवानी है विंटराइज करवाना है नए कार लगवाने हैं या फिर अपनी उबर की सर्टिफिकेशन ऑथोराइज करवानी है तो आप जाइएगा योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट प्राइसेस बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहाँ पे कहाँ पे योगीज ऑटो सेंटर। तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की तो आप कॉल कीजिएगा योगीज ऑटो सेंटर के हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-6464 योगीज ऑटो सेंटर आपके लिए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है। तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवाने हैं ऑयल चेंज करवाना है तो आज ही योगीज ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट।

पूरे सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहा ताप पाप संताप नासे असिमरत किल विक सब नासे अनहद कर हो मिल सुंदर।

भोग रहा सुखा तेरी मंडली तेरा मन तन आरोग गुनगा भवनित राम के ए अवखद जोग आए बसों का देश में।

घर घर जा पिए अंतर लाई किल विचित्र सुध होए साधु शरणाई सुनत जपत हर नाम जप

सत अपने को बल जाए, जिन पैज रखी सारे संसार रहा, कर्मस्तक धार बालक रखी नो।

जाप रहा कर कृपा हसत रब्बी ने जित्र उधार नवखंड प्रताप दुख बिन से सुख अनंत पर बैसा कृष्ण भोजी।

कनकनाशन गणेश स्तोत्रम। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं।

मधुरम मंगलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम वचितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम या अली मदद। और आपके लिए ये वीकेंड जो है, अभी लॉन्ग वीकेंड तो है नहीं है, लेकिन ये है कि इस वीकेंड अभी बहुत सारी अच्छे अच्छे इवेंट्स हो रही हैं। नियाग्रा फॉल में 3 दिन का म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा है, तो सभी लोग आए हुए हैं, बड़ी मजेदार रौनक छाई हुई है। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो, और साथ में आपको और भी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया गैजेट्स किचन के लिए चाहिए, तो आपको जाना होगा, जी हाँ, तो आप को जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए प्रिंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। आपको लेटेस्ट किचन की गैजेट चाहिए या फिर आपने बढ़िया टीवी लेना है, लेटेस्ट मॉडल का टीवी आपको चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स की आप स्पेशल फेस्टिव सीजन आपके लिए अब शुरू हो चुकी है, तो फेस्टिव सीजन आपके लिए गणेश उत्सव से हमेशा शुरू होता है, तो आप अगर आपने बढ़िया बढ़िया सामान लेना है, अभी से शुरू करना है, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए और वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया चॉइस आपको मिलेगी, बढ़िया प्राइस मिलेगी, बढ़िया क्वालिटी मिलेगी। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर किसी किस्म की भी आपको प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी है, तो आप बहुत बढ़िया, आपको आप नसीब फ्रेंड को कॉल कीजिएगा। नसीब फ्रेंड आपके लिए बहुत बढ़िया, उनका सर्विस है आपके लिए। 519-542-1260 पर आप उनको कॉल कर सकते हो। 519-546-1260 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं। अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है, तो एच के मूवर्स आपकी पूरी मदद करते हैं कनाडा भर में मूव होने के लिए। और साथ ही अगर आपने किसी किस्म की भी आपको आपने कोई सामान किसी तरह का भी मूव करना है, उनके बहुत सारी टीम्स हैं, तो आपके सामान को हफाजत से पहुंचाते हैं, तो आप उनका नंबर लिख लीजिए और अपना ट्रक बुक कर लीजिए। आप 416-524-7004-416-524 आप उनको कॉल कर सकते हैं। 416-524-7004 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं एच के मूवर्स को। और मूविंग कोई आसान चीज नहीं होती है, बड़ी मुश्किल होती है। तो इलेक्शंस अक्टूबर 26 को आने वाले हैं, तो आपके लिए इलेक्शन के टाइम पे आपको आपको पता होना चाहिए कि आपके इलाके के उम्मीदवार कौन कौन से हैं। जैसे कि थौराड में साद महमूद आगे आए हैं, तो उनका जो है कि कम्युनिटी की अपनी की बहुत नियाग्रा और आसपास के इलाके में उनका जो बड़ा अच्छा नाम है, क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी की बहुत सारी मुश्किलों को हल करते हैं और सभी का उनके जो भी उनको किसी का पता चले, किसी के मदद चाहिए, तो सभी जगह वो अपनी कम्युनिटी में आगे आते हैं मदद करने के लिए लोगों की। तो आप को वोटिंग की अभी अक्टूबर 26 को है, तो आप अपने थौराड में अगर आप रहते हैं, तो आप साद महमूद आपकी सेवा में हाजिर हैं। हैमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो, तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉक क्लिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5000 तों लै के 1 लाख ते फाइनेंस दी चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49%
ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਸੀਬਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੀਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਚਾਰ ਟਾਇਰਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸਿਰਫ 299 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ AM530 ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BBT ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ AM530 ਤੇ ਮੀਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਤੇ $500 ਆਫ। ਜੀ ਹਾਂ, $500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਚਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ BBT ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ। ਕਾਲ ਕਰੋ 365-384-3840। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ 365-384-3840। BBT ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲਸ। ਜੀ ਹਾਂ, BBT ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲਸ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ 9365-384-3840, ਰੌਕਲਿਫ BBT ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ। तो आइए अब आपको एक बहुत ही प्यारा सा बढ़िया सा गीत सुनाते हैं, क्योंकि अब आपके लिए गीत तो सुनाना बनता ही है ना, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया बढ़िया गीत आपको सुनाएंगे। पहले ये बता दो कि आपका वीकेंड कैसा रहा? अभी बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं तो आपका जो टाइम बच्चों के साथ समर में बीत रहा था तो अब आपका जो समय है आप वो समय आप किस चीज में लगा रहे हो? तो मैं सोचती हूँ कि कई बारी पेरेंट्स को भी जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो फिर पेरेंट्स भी अगर चाहें तो वो अपने लिए कोई अच्छा सा कोई अपनी हॉबी को डेवलप कर सकते हैं, अपने अंदर उनके कोई कला छुपी है तो उनको उसको आप कल्टीवेट कर सकते हो, छोटे छोटे कोर्सेज ले सकते हो। जैसे कि अभी अडल्ट एजुकेशन में आप $55 दे करके कोई भी कोर्स लेना चाहो तो आप ले सकते हो, कोई भी पढ़ाई करना चाहो तो कर सकते हो। तो इसलिए आप किसी तरह की भी अपनी जिंदगी में तरक्की करना चाहो तो थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे तो आप जरूर आप कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है कि अपना जो टाइम है वो आप उसकी आपको वैल्यू होनी चाहिए। अगर आप अपने टाइम की वैल्यू करते हो तो टाइम आपकी वैल्यू भी करता है, तो इसलिए आप अपने टाइम की थोड़ी सी वैल्यू कीजिए। बच्चे तो अब स्कूल चले गए तो आप भी थोड़ा सा अपने आप को सारे आपको लोग मिलेंगे, बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आइए इसी विचार के साथ इस गीत को सुनते हैं।

0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो अब अगर आप अपने घर में बढ़िया फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया टीवी लेके आना चाहते हो और बढ़िया बढ़िया किचन की गैजेट चाहिए, लेटेस्ट टीवी का मॉडल चाहिए और आपको बैक यार्ड में अपने बढ़िया फर्नीचर और बढ़िया बारबेक्यू चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्स में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, अपने ऑर्डर बुक कीजिए। अभी फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है तो आप वहाँ पे जाइए और अपना ये सारा जो सामान है उसके लिए आप ऑर्डर कीजिए 905-799-0045-799-0045 पे कॉल कर सकते हो। हम मिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अजी पहुंचो बीबीटी रॉक क्लिफ ऑटो मिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5000 तो लैके $1,00,000 तक, ते फाइनेंस की चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तो शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहंदे हो तां साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तों वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। जे तुहानूं नवें टायर चायर दी लोड है तां ओह वी मिलणगे, चार टायर दा सैट सिर्फ 299 तो शुरू। हुण सुणो AM530 लिसनर लई खास ऑफर, जदों तुसी बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन आओ, सानूं सिर्फ ए दसो मैं AM530 ते मीरा शर्मा तों तुहाडे बारे सुनिया है, अते तुहानूं मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हाँ, $500 दी सिद्धी बचत, तां फिर देर किस गल दी, अज ही विजिट करो बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, कॉल करो 365-384-3840 905-6-365-384-3840 दोबारा सुनो 365-384-3840 बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट लोकेशन सिलेक्शन, ग्रेट लोकेशन ग्रेट सिलेक्शन ग्रेट डील्स, बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन। जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और आपको अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे जो फेस्टिवल शुरू होंगे। अभी पहले तो आपके लिए जो है कि श्राद्ध, जो जिसमें हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और फिर उनके ये खास दिन उनके लिए डिवोटेड होते हैं, सभी लोग अपने अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिस तरह की भी उनकी श्रद्धा हो, तो आप भी जरूर अपने पूर्वजों की के लिए करेंगे जो भी कुछ। पर अभी तो गणेश उत्सव है तो राम मंदिर में स्पेशल प्रबंध किया गया है गणेश उत्सव का, बोट क्रूज होने वाला है 20 तारीख को, और 20 तारीख को ही उनके गणेश विसर्जन करने वाले हैं। बहुत सारे मंदिरों में बहुत बढ़िया बढ़िया इस वीकेंड प्रोग्राम किए जाएंगे, क्योंकि गणेश उत्सव 13 सितंबर से 19 सितंबर तक है। तो अब साथ में ही मेरे लिए, मैंने 20 तारीख को जाना था राम मंदिर वाले बोट क्रूज में, पर उस दिन ही टेरी फॉक्स रन है, तो मैं हर साल पिछले 20 साल से टेरी फॉक्स रन में जाती हूँ और 5 किलोमीटर वॉक करती हूँ, तो मैं यहाँ इस साल नियाग्रा फॉल में जाऊंगी।
1: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाए
0: हो। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। अगर आपने किसी किस्म का भी, अभी नवरात्रे भी आने वाले हैं, आपको किसी तरह का भी पूजा का सामान चाहिए होगा, तो आप इंडिया सजावट एंड पूजा हट आपके लिए मेलनी ड्राइव पे मौजूद है, आप वहाँ जाइए और आपको सब कुछ मिलेगा। साथ साथ में आपको बहुत बढ़िया, जो आप वहाँ जाते हो तो फीलिंग बहुत अच्छी आपकी हो जाती है।
2: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर,
3: यहाँ से आपको ठाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात सिदोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन, टेलीफोन 905-799-9400।
4: मज्जा मालवा द्वापा वेडिंग स्टोर।
0: जी हाँ, तो अगर आपको मूव होना है तो एचके मूवर कनाडा भर में मूव करने के लिए आपकी पूरी मदद करते हैं। तो एचके मूवर्स को आप आज ही अपना ट्रक बुक कीजिए मूविंग के लिए 416-524-4416-524-6704 पे आप एचके मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। तो आइए आपको एक और बहुत ही प्यारा सा बुला मिश्रा गीत आपको सुनाते हैं। तो उम्मीद रखती हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगा। तो एक बार आपको ये भी याद करा दें कि रात को भी हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे 10 से 11 बजे तक। तो बढ़िया बढ़िया आपको म्यूजिक सुनाएंगे और फिर और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जो कि हर रोज की जिंदगी की हैं वो आपको। बच्चों के स्कूल शुरू हो गए हैं तो जहाँ भी बच्चों को बस उतार रही होती है तो आपको जरूर अपना कार को स्टॉप करना चाहिए।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमा डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड तो आधे इन्ने साला दे परोसे अते विश्वास कारण असी लेके आया कस्टमर्स एप्रिसिएशन से जो G20 से 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स उन 10 लोकेशंस तो सर्व कर देने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165
1: एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। जी हाँ, तो अगर आपको गणेश उत्सव के लिए कोई भी मिठाइयाँ चाहिए तो समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे आपको एकदम ताजा सामान मिलता है, क्योंकि उनकी जो टर्नओवर है बहुत ज्यादा है। यहाँ पे टर्नओवर बहुत सामान बिकता है, तो आपको हमेशा फ्रेश सामान मिलेगा। ये तो पक्की बात है, मानने वाली बात है। आप भी इसको जरूर आजमाइएगा, आपको समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जाइएगा। तो लेट्स हियर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

समझती है मुझे दोनों जहाँ, इन्हीं में खो गया दिल मेरा कहो तुम कहाँ।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो रात को 10 से 11 बजे आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। और अगर आपको खाना ऑर्डर करना है, लाइव कुकिंग करवानी है किसी भी मौके के लिए, तो आप इंडिया, न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है। तो और जानकारी के लिए आप 905-814-1730 पर कॉल कर लीजिए, बुक कर लीजिए 9058141730। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, तो मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। रात के वो फिर हम इसी तरह आपका मनोरंजन बहुत बढ़िया तरीके से आपका मनोरंजन कर और बढ़िया बढ़िया गाने लेकर पेश हो जाएंगे, तो आपसे बातचीत भी होगी। तो आइए सुनिए ये प्यारा सा गीत और नानक नाम चढ़ती कला पानी स्वादा पर। हाँ, वंडरफुल वीकेंड।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

प्रगट कीने प्रभ करने हारे नासन भाजन थाके कार मंगल वाजह नित वाजे अपने खासम निवाजे।

उम्मीद है कि 15 तो थल्ले ता रात वेले चलो नहीं जाएगा, चलो ये भी प्लेजेंट है। ते पूरे मौसम दी गल करिए, जेकर पूरे हफ्ते दी ते जी टेम्परेचर चलो फिलहाल इस हफ्ते चंगे ही रहने वाले ने। हालांकि जो सोमवार का दिन है तकरीबन 16 डिग्री टेम्परेचर जो ने तापमान रहनगे, बदलवाई बनी रहेगी कुछ कुछ दिनों दे विच इस हफ्ते दे विच, पर मीह दे आसार जो ने यह घट वाधी जापते ने, ते मौसम जो है यह फिलहाल अगले हफ्ते तक कह सकते हैं आने वाले हफ्ते जो है वह सुक्का ही रहने वाला। सो जी हले दिन जो है वह नहीं चढ़िया, ते हुण सूरज थोड़ा जिहा लेट जरूर आना शुरू होया, ते 7:02 ते अज का जो सूरज चढ़ना है, ते हौली हौली जो किरणा दे नाल जो फिर रोशनी प्रकाश होना है, सो वह भी नज़ारा घट नहीं होंदा। ते 7:21 ते हुण चलो आउंदा लेट है ते फिर जांदा जल्दी है, 7:21 ते अज जो है यह दिन ढलना है, पर फिर भी बहुत सारा समा दिन दा बहुत चंगा समा जी परमात्मा तुहानू बख्शे। ते जो फिर वीकेंड लई भी असी सोचिया हुंदा, पहला तो फिर आराम ही मिले, ते फिर चलो इस दे विच भी जो थोड़ी बहुती प्लानिंग जो है असी करदे हुन्ने आ, बच्चियां नू नाल शामिल करके प्लानिंग करनी पैंदी है। सो जी उन्हां सारियां प्लानिंग्स जो नू जो है तुसी जरूर पूरा कर सको, ते ये अरदास जो है उस परमात्मा अग्गे जी जरूर करिए। ते जी नाल ही मैं ये संदेश जो है जरूर दे देवां, क्योंकि अज 19 तरीक है ते कल 20 सितंबर, ते अमृत संचार कल जरूर है गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा माल्टन विखे, ते तुसी इस बारे पूरी जानकारी जरूर लो जी, ते माल्टन गुरद्वारा साहब जाके तुसी पूरी जानकारी इस बारे ले सकते हो। सो इस दे नाल जी आओ सरवण करिए एक शब्द प्रोग्राम पंजाबी लहरा रेडियो दे नाल। इस वेले तुसी जी सफर दे विच बने हुए हो, ते जो साथ है 2 घंटिया का साढ़ा 6 तो 8 का साथ है जी, बिल्कुल तुसी बने रहना।

0: ਇੱਥੇ ਲੋ ਜਮ ਫਾਤਿਮ ਜਲ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਚ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਯੂਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈਲੋ ਕੈਸੇ ਹੈ ਜੀ ਆਪ
1: हेलो हेलो अमन जी मैं बहुत अच्छी हूँ आप कैसे हैं
0: मैं अच्छा हूँ जी हम पंजाबी में बोले कि हिंदी में बोले
1: मैं हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ
0: मैं पंजाबी में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ हिंदी में मैं बस वो बोल सकते हैं कि कैसा टोआ पाटा है ना लांगा जाता है ना टापा जाता है मेरी हिंदी ऐसी है जी
1: बिल्कुल
0: फिर भी मैं ट्राई करूंगा ठीक है सो मेरी इंग्लिश से मेरी हिंदी बुरी है
2: जी
0: मेरी पंजाबी अच्छी है ठीक है अच्छा अपना नाम बताएंगे प्लीज
1: मैं रिया बात कर
0: रही हूँ मास्टर योर एग्जाम में हम कौन कौन से एग्जाम की प्रेपरेशन करवाते हैं ये बताइए पहले
1: तो अमन जी मास्टर एग्जाम में हमारे पास जैसे कि मॉर्गेज का एग्जाम ओमविक का रियल एस्टेट हो गया एंड LLQP और जैसे कि और हमारे पास बैंकिंग के एग्जाम्स हैं जिनकी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे और भी एग्जाम्स हैं जो जो कि जैसे कि इफिक CSE जो बैंकिंग के अंदर ही आते हैं LLQP रिबो ये सब एग्जाम्स हैं जिनकी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं
0: हाँ जी और जो एग्जाम दे विच पहले चल दिया आप एक एग्जाम कराते हैं डिजाइनर का जिसमें मेरे को डिग्री का नाम नहीं पता क्या होती है जिसमें आर्किटेक्ट बन जाता है बंदा है ना
1: हाँ जी हाँ जी
0: उसको क्या बोलते हैं HRCA कुछ
1: हाँ जी उसका जो नाम है वो है HCRA इसको हम कहते हैं ये BCIN की तरफ से होता है और एक बिल्डर का एग्जाम होता है
0: एक बिल्डर का एग्जाम होता है जे कोई बिल्डर का एग्जाम लेना चाहता तुसी हुन लगदा कि अगे आने वाले टाइम जिहड़ा सारा मोमेंटम चेंज होगा एक बार तो तुसी बिल्डर का एग्जाम या तुसी जिहड़ा आर्किटेक्ट का एग्जाम ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੋ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਬੰਦੇ ਕੋ ਐਵਰੇਜ
1: हाँ जी सर जी जो BCIN का एग्जाम है जो बेसिकली हमारा ड्राइंग्स का एग्जाम होता है जैसे कि आपने अभी बताया तो उस एग्जाम को करने में हमारे करीब दो हफ्ते आपको सिर्फ 2 वीक्स की प्रिपरेशन चाहिए 2 वीक्स की ट्रेनिंग उसके बाद आपको एग्जाम दे सकते हो और जो हमारा HCRA का एग्जाम है जो कि प्रॉपर बिल्डर का एग्जाम है उसके लिए आपको कम से कम 3 to 4 वीक्स रहते हैं उस एग्जाम को करने के अंदर
0: हाँ जी सो तुसी लाके चलो 2 to 1.5 to 2 months, 3 months ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝੋ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮਝ ਲਵੋ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ 95% ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5% 'ਚੋਂ 1% ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ 1% ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਫੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਹ ਆ 2% 3% ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਓ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਮੋਰਗੇਜ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਬਰ ਕੌਣ ਸੇ ਨੰਬਰ ਪੇ ਕਾਲ ਕਰੇ
1: ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਹਮੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ 437-376-5656
0: 437-376-5656 4373756556 ਨੰਬਰ ਆ ਮਾਸਟਰ ਯੂਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ 437-356-5656 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਕਹੇਗਾ ਪਿੰਡ ਮੈਂ
1: मैं बस यही कहूंगी कि अगर आपको कोई और भी एग्जाम के लिए कंसल्ट करना है तो हमारी टीम जो है वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी हर एक एग्जाम के लिए और आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं आपको एग्जाम के एनरोलमेंट से लेके एग्जाम हॉल तक की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम आपको पूरी प्रोवाइड करेंगे
0: 437-376-5556 मास्टर योर एग्जाम 437-376-5656 बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच
1: थैंक यू
0: जी थैंक यू 437-376

0: ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼।
1: ਫੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-725-2551 416-725-2551।
2: Canada Day Study Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, या Self-Employed दी File, गल की, Immigration दी हर Problem दा Solution लैण लई, Community दे जाने पहचाने अते तजरबेकार Immigration Consultant, Gary Virk नूं मिलो।
3: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे Immigration दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना, अते इको ही था, CIC Immigration, हुणे ही कॉल करो, 416-456-6161।
4: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
5: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सम्राज सिद्धू तो ही करवाई है।
6: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तां सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सम्राज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते।
4: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुने ही सम्राज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
7: Toronto, get ready. Punjabi Virsa Radio and Television. Realtor Rav Singh, Cellular Points, A to Z Kitchen Cabinet, and Realtor Harp Garewal present the sensational Hans Raj Hans.
8: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpradeshradio.com ਜਾਂ www.deshpradeshtv.com। ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ TV ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7।

0: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
1: काउंटिंग नहीं ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
2: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते
1: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905 450 2828 905 450 2828

0: 530. CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: वेलकम टू रेडियो गोल्ड. आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड, जहां सिर्फ आपके लिए है सब कुछ, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक नया और रोमांचक अनुभव, जहां होगा म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, न्यूज, टॉक शो और आपका और हमारा साथ. तो सुनते रहें रेडियो गोल्ड, क्योंकि ये है आपके साथ हमेशा. सुनहरे लम्हे और चमकती दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर लम्हा है सोने की तरह की गोल्डन मोमेंट्स की मिठास रेडियो गोल्ड के साथ. Views, ideas and opinions expressed in the program are strictly that of the participants and they do not in any ways reflect the views, ideas and opinions of Radio Gold. गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका प्रोग्राम लेके. हम आपके लिए हाजिर हो गए हैं. हर सैटरडे को ये प्रोग्राम आपकी नजर होता है. 12 सितंबर है आज का दिन, सैटरडे का खूबसूरत सा दिन. क्या खूबसूरत मौसम है, 22 डिग्री टेम्परेचर. इतना हसीन, इतना खूबसूरत मौसम हो तो फिर कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए. हर वेले, हर वक्त शुक्राना शुक्राना और शुक्राना करते रहना चाहिए. आपका और हमारा साथ साथ साथ रहेगा. पंजाबी हिंदी का मिक्स, पंजाबी हिंदी उर्दू का ये मिक्स प्रोग्राम होगा. और आपने कोई भी बातचीत करनी है तो हमारे नंबर है 416-233-7368. स्टूडियोज के नंबर है एंड माई नंबर इज 416-910-6000. इस प्रोग्राम में म्यूजिक होगा, गीत संगीत होगा और बहुत सारी नॉलेज आपके लिए लेकर हम हाजिर हुए हैं. रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन होगी, मॉर्गेज की इन्फॉर्मेशन होगी, एस्ट्रोलॉजी की इन्फॉर्मेशन होगी कि सितारे आपके क्या कहते हैं. तो हमारे साथ रहे 5 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका और हमारा साथ साथ साथ. कोई भी गीत संगीत सुनना चाहते हैं, फरमाइश करना चाहते हैं तो यू कैन कॉल अस इन स्टूडियो और ऑन माई सेल नंबर. और नासिर जी मेरे साथ हैं आज स्टूडियोज में, इनसे बातचीत करेंगे मॉर्गेज के रिगार्डिंग, कुछ इनसे टिप्स भी लेंगे. और बहुत सारे बिजनेसेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं हमारी कम्युनिटी के नासिर शाह. नासिर जी आपका तोड़ा स्वागत है निगा.
2: बहुत शुक्रिया सोनम जी. रेडियो प्रोग्राम सुनने नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. जिवें तुसीं कहा जी रेडियो गोल्ड, रेडियो गोल्ड वाकई गोल्ड है क्योंकि लोगों ने दिलों च वसिया है. पहले तुसी डिफरेंट चैनल हो, तुसी 530 AM ते काम कर रहे हो और बड़ा अच्छा लग्या तुहाडा जिहड़ा तरीका, तुहाडा 15-16 साल का एक्सपीरियंस है वो तुसी एज ए होस्ट काम किया, वो जिहड़ी चीज हैगी वो सानू लोगों नू बहुत चंगी नजर असी वेखने और बहुत तुहानू असी रिस्पैक्ट करने आ. ओनली बिकॉज तुहाडा जिहड़ा टैलेंट है और तुहाडी जिहड़ी क्वालिटीज न वो सानू बहुत चंगे लगदे हन. ते सोनो जी अज असी बहुत सारिया गल्लां तुहाडे नाल शेयर करन जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारिया चीजा ते असी अंडरस्टैंड ते करने आ लेकिन दिल नहीं मनदा. समझ आंदी है, दिल नहीं मनदा ते उंदे वास्ते बहुत जरूरी है तुसी अपने आप नू पहले मेक श्योर करो कि तुहानू अपनी समझ आ गई है. अगर तुहानू अपनी समझ आ गई तो फिर तुहानू सारियां गल्लां समझ आ जावंगियां. जदों तक तुहानू अपनी समझ नहीं आएगी तुहानू किसी दी समझ नहीं आएगी.
1: नासिर जी ए एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, एदे उपर अज असी गल्लबात वी करांगे. अपने नाल कनेक्ट होना बहुत जरूरी है और असी दुनियादारी च इन्ने उलझे होए आ कि असी सारी दुनिया नू खुश करन च लगे रहने आ बट असी अपने आप नू भूल जाने आ, है ना. और सानू पता ही नहीं है कि असी खुद नाल कनेक्ट होना है, अपनी सोल नाल किस तरह कनेक्ट होना है. इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसीजर एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. अज साडे नाल गलबात इस टॉपिक उपर करांगे और शुक्राना बड़ा जरूरी है जिंदगी दे विच.
2: हां जी, है ना. देखो गुरु नानक साहब ने 20 रुपया नाल अपना लंगर चलाया सी.
1: बिल्कुल,
2: हुण पूरे वर्ल्ड च लंगर चलदा पिया. साडा भी यही बिलीव है. असी बहुत सारे लोग ऐसे बिलीव नाल काम कर रहे हैं. तुसी अगर हो सके तो दवो, देन नाल तुहानू सुकून मिलेगा और उन्दे नाल तो जिहड़ा ओह सुकून होएगा ना ओह तुहानू अंदाजा ही नहीं हैगा. और मेरा बिलीव 100% हैगा जे तुसी एक वारी करके वेखो, अगर तुहानू नहीं यकीन आंदा, एक रुपया या एक डालर किसे नू दे के वेखो रब दे नां दा, मैं कहना हुंना ते 70 गुना वापस आंदा या नहीं आंदा.
1: और
2: 70 गुना अगर लैना जे ते ओह 1 रुपया दे के वेखो और वेखो तुहाडे आने वाले तुहाडी लाइफ चेंजेस कि नहीं आंदियां. और बहुत सारी चेंजेस आवेंगे, ऐ नहीं खाली तुसी गल्लां ते कर लैंदे हो. बहुत सारी जगह ते तुसी कहंदे हो यार पता नहीं की होना ते की नहीं होना. एक्चुअली तुसी अगर चाहंदे हो अपनी लाइफ नू चेंज करना, लाइफ नू बैटर करना, ते रब ते देना शुरू कर दे, रब दे नाम दा देना शुरू कर दे और शुकराना शुरू कर दे. जदों तुसी शुकराना और रब दे नाम दा देना शुरू कर दोगे ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
3: ਜੀ। ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟ, ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਫੋਰ ਵਟ ਯੂ ਹੈਵ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਚੁਲੀ ਇਟਸ ਇਨ ਬਿਲਟ ਇਨ ਆਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਬਟ 2 ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਨਾਟ ਵਿਦ ਯੂ, ਬਟ ਯੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦੈਟ 2, ਦੀਸ 2 ਥਿੰਗਸ, ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫੋਕਸ ਔਨ 8 ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਫੋਕਸ ਵਟ ਯੂ ਹੈਵ ਐਂਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਐਂਡ ਓਵਰਕਮ ਵਿਚ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਂਡ ਦ ਬਲੈਸਿੰਗਸ yet to come. Sabar rakhein aur shukrana karte rahein. Zindagi bahut khoobsurat hai aur isko jeene ki koshish hamesha karte rahein. Aur hai na, aur hum aaj ka jo program da jehda pehla gaana hai, assi shukrane de naal hi shuru karange. Beautiful song, aur tusi studios call karke zarur dassna jekar tuhadi shukrana karan naal, grateful hon naal, gratitude de naal zindagi change hoyi hai, to please share with others. Ho sakda hai tuhada experience kise di zindagi badal de. 416-233-7368 studios de number hai. Let's enjoy this beautiful song. Stay with us, Radio Gold, 5 to 6 a.m. 5:30.
1: The views, ideas and opinions expressed in the program are strictly that of the participants and they do not in any

कुजीन 1310 डंडा स्ट्रीट ईस्ट मिसिसागा। खालिस और लज्जत से भरपूर खाने वतन की याद दिला दें, तीखे और तेज मसाले हर फीकेपन को मिटा दें। लाहौरी गोट एंड चिकन कढ़ाई, शनवारी चिकन एंड गोट कढ़ाई, सीख कबाब, रिश्मी कबाब, पाए निहारी, हलीम बिरयानी, शवरमा, पिज्जा और बहुत कुछ सिर्फ ओपन माइक कैफे एंड कुजीन पर। 416-526-6800 416-526-6800

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रिट्स फर्नीचर दा मैसेज जरा

0: क्योंकि 99.9% वर्क नहीं करता है ना।
1: साढ़े ना फादर ने शेयर पढ़ते हैं जैसे बाली का काम में पानी देना हर पर मशकान लावे, रब का काम में बिल्कुल लाना लावे ही लावे,
0: लावे ही लावे।
1: एक्चुअली शायर जिन्हें लिखा है शेर उन्हें लिखा है माली दा काम में पानी देना पर मशकन लावे, रब दा काम में फल फूल लाना लावे या ना लावे,
0: लावे या ना लावे।
1: मेरे फादर ने टोटली बदलता,
0: लावे ही लावे
1: ही लावे।
0: क्या बात है,
1: इस बिलीव ते काम करना शुरू करो। जदों यह बिलीव थोड़ा आ गया तुसी समझो कामयाबी कामयाब। फल लगना है, देर हो सकती है, देर नहीं हो सकता,
0: देर नहीं हो सकता।
1: जो थोड़ा बिलीव स्ट्रांग हो गया तुसी अगे वधोगे वधोगे। साडा तो यही बिलीव है और रब दी जिन्नी मेहरबानियां ऐसे बिलीव दे नाल मेहरबानियां और रब ने हमेशा साडे ते कर्म कीता ऐसे वजह तो असी बिलीव अपना स्ट्रांग रखिया। तो मैं ऑलवेज यही कहना अपना बिलीव स्ट्रांग रख के चलो और अगे तुहानू कोई नहीं रोक सकदा वधन तो। बहुत सारे लोग बैठे होंदे ने ओ यार सानू कंपनी मिलदा पिया, यार सानू यह प्रॉपर्टी नहीं मिलदी पई, ये चीजां सोचनियां बंद कर दो। कुछ मिलनगी अगर तुसी कोशिश करोगे, कोशिश करो,
0: कोशिश
1: देखो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, कोशिश करो, रब दा शुकराना करो और रब दे नाम ते कुछ ना कुछ भावे रुपया दवो भावे 100 रुपया दवो कुछ ना कुछ दवो, रब दी मेहरबानी।
0: मैं लगता बहुत सारे लोग होंगे जेड़े

0: सा कैलकुलेशन देखते हैं। मान लीजिए आप लगभग 1 मिलियन का घर खरीदते हैं और 20% डाउन पेमेंट देते हैं, मतलब करीब 8 लाख का। अगर इलस्ट्रेटिव मॉर्गेज रेट 4.5% है और अमोर्टाइजेशन 25 इयर्स की है तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की मंथली पेमेंट लगभग 44-47 बनती है। इसमें अब प्रॉपर्टी टैक्सेस, होम इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और यूटिलिटीज ऐड कीजिए तो 1 मिलियन का घर सिर्फ 44-47 पर मंथ नहीं है। ये है मेरा रियलिटी चेक। घर की कीमत देखकर अफोर्डेबिलिटी जज मत कीजिए, टोटल मंथली कैरिंग कॉस्ट देखकर कीजिए। और यही कैलकुलेशन इन्वेस्टर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सेलर्स के लिए हिडन लेसन है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी मार्केट में 30 से 60 दिन बैठी है तो सिर्फ प्राइस देखकर डिसीजन मत लीजिए। अपने रियल्टर से पूछिए मेरी प्रॉपर्टी को कितने क्वालिफाइड बायर्स ने देखा या सिंपली सिमिलर प्रॉपर्टीज कितने में बिक रही हैं, मेरा कंपटीशन कितना है, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम प्राइस नहीं होती, प्रेजेंटेशन, कंडीशंस, टाइमिंग या मार्केटिंग भी हो सकती है। और बायर्स के लिए लोअर प्राइस हमेशा बेटर डील नहीं होता। अगर आपको 50,000 सस्ती प्रॉपर्टी मिलती है लेकिन उसमें 80,000 की रिपेयर है तो डिस्काउंट कहाँ गया। इसलिए ऑफर प्राइस से पहले टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप देखिए। जीटीए में मार्केट में अभी नंबर्स हमें एक मिक्स्ड पिक्चर दे रहे हैं। प्राइसेस पिछले साल से नीचे हैं लेकिन इन्वेंट्री भी कम हो रही है। अगस्त में बेंचमार्क प्राइस 4.5% नीचे था जबकि लिस्टिंग्स 14.1% नीचे थी। इसलिए आने वाले महीनों में मार्केट को सिर्फ प्राइसेस गिराएंगी या प्राइसेस बढ़ाएंगी के चश्मे से देखा जाए तो ये सही नहीं होगा। सप्लाई कहाँ जा रही है, डिमांड कहाँ लौट रही है और सबसे जरूरी बायर्स की परचेजिंग पावर कहाँ खड़ी है। मार्केट को सिर्फ देखे मत, समझिए भी। मिलते हैं अगले रियल एस्टेट वीकली अपडेट में। शुक्रिया।
1: प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड शाइन विद सोनम। कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।

0: बच्चों कैसी हो? How's your son doing?
1: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
0: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
2: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन, 905-457-3232, क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कैंडा।
3: लीडी गोल्ड में आपका स्वागत है और चले आपको लेकर चलते हैं क्लियर ऑप्टिकल, और वरुण जी हमारे साथ हैं। वरुण जी वेलकम, कैसे हैं आप?
4: बहुत बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच सोनम जी, आपका बहुत धन्यवाद मुझे प्रोग्राम पे लेने का।
3: यू वेलकम जी। और चलिए, क्लियर ऑप्टिकल के बारे में बहुत बार हम सुनते रहते हैं, लेकिन जो हमारे नए लिसनर्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें, क्लियर ऑप्टिकल क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड व्हाट इज द लोकेशन?
4: हाँ जी सोनम जी, क्लियर ऑप्टिकल है ये ब्रैम्पटन में स्टील्स एंड फाइनेंशियल के एरिया में। हमारी एक दूसरी लोकेशन भी है जॉर्ज टाउन में, एंड हमारा जो मेन बिजनेस है आपको दुनिया के तमाम अच्छे से अच्छे फ्रेम्स देना आई ग्लासेस के, सो ब्रांड नेम फ्रेम्स, आई एग्जामिनेशन भी करते हैं हम, एंड आपकी कोई ग्लासेस की रिपेयर करनी है या आपने अपने फ्रेम में ही लेंसेज डलवाने हैं, हमारे पास पूरा ए टू जेड सिस्टम है।
3: क्लियर ऑप्टिकल फाइनेंशियल एंड स्टील्स के कॉर्नर पे बहुत ही खूबसूरत स्टोर है, आप भी वहां पे जाकर जरूर आए और एक चक्कर जरूर लगाएं एंड यू विल सी द डिफरेंस विद क्लियर ऑप्टिकल। वरुण जी जाने से पहले अपना नंबर दे दे एक बार फिर से।
4: सोनम जी हमारा नंबर है 905-457-3232, एंड सोनम जी एक बहुत ही जरूरी बात है मैंने आप हमारे लिसनर्स को बतानी है कि हमारे पास स्मार्ट क्लासेस की पूरी रेंज है, जो स्मार्ट क्लासेस जिनमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, कैमराज है, माइक्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन AI, आजकल AI के जमाने में आप अपनी ग्लासेस में भी इस चीज को एंजॉय कर सकते हो।
3: वंडरफुल, क्लियर ऑप्टिकल स्टील्स एंड फाइनेंशियल, थैंक यू वरुण जी, शुक्रिया।

437 264 3175। लोन थानू 50,000 तो लैके 1,70,000 तक का लोन मिल सकता। तुसी कॉल करके ज़्यादा डिटेल्स लै सकते हो 437 264 3175। तो इन्ह का बकायदा ऑफिस हैगा जी डेरी एंड हर अंटारियो ते। सो तुसी बकायदा एक ऑफिस च जाना है तो उत्थे जाके उन्हां दे नाल गलबात करनी है। कोई यही कि सिर्फ फोन ते गल कीती ते कल नूं पता नहीं जी कोई हैल्प की लोड़ पै जाए तो असं कितने जाइए। सो इन्हों का बकायदा ऑफिस हैगा, तुम ऑफिस विजिट करना चाहते हो तो 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड सुइट 212 212 के पहुँचना, तो मिसिस आगा के लोकेटड ने 437 264 3175। 437 264 3175 से कॉल कर लेनी है। लोन थानू 50,000 तो लैके 1,70,000 तक का लोन, 2.5 साल कोई ब्याज नहीं है 0%, तो 2.5 साल तो बाद बहुत ही मिनिमम ब्याज तुसी पे करना। इदा का लोन सिर्फ गवर्नमेंट ही अफोर्ड कर सकती है क्योंकि अदरवाइज जो लोन बड़े महंगे होंगे। सो 2.5% 2.5 साल तो बाद जो इंट्रस्ट होगा 437 264 3175। 437 264 3175। मैं पढ़ रही सी गैस प्राइसिस अप हो जानी है, वैसे तो 1 सेंट ही दिखाते हैं जी, चलो चंगी गल। पिछले वीक तो 8 सेंट कट्ठा ही जरा गैस प्राइसिस वध गई सी। तो बड़ा औखा होंगे जो तुम गड्डी लैके निकलते हो तो बाहर पंप जो क्रॉस करते हो तो फिर निगाह मार दो कि किन्नी प्राइस है कि। सो 416-233-7368 416-233-7368 स्टूडियो से नंबर पर तुम कॉल कर सकते हो। कहते हैं भी 3 चीज़ा इंसान को पूरी तरह बदल दिंदियां जिंदगी। एक तो जे किसी चंगा मौका मिल जाए वह इंसान को बदल दिंदा। सो चंगे मौके नूं तुसी ग्रैब कर लो, उस मौके जो थानू मौका मिलिया उहदे ते तुसी मेहनत कर लो, थोड़ी जिंदगी बदल सकती है। एक कहिंदे जिंदगी च मिलिया होया धोखा वह भी थोड़ी जिंदगी बदल दिंदा। सो 3 चीज़ा जिहड़ियां इंसान नूं पूरी तरह बदल दिंदियां, एक तो मौका, एक धोखा, ते तीजी चीज़ तुसी दसनी आ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ, ਤੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। 416-233-7368 416-233-7368 ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਦੋ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੋਖਾ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। 416-233-7368 416-233-7368 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। 416-233-7368 416-233-7368 ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਅੰਦਾਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਪਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। 416-233-7368 ਕਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਆ।

ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ। कल्चर ऑफ पंजाब आपको एंटरटेन भी करता है और आपको बिजनेस भी देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रो करे तो इस एंटरटेनमेंट सेगमेंट का हिस्सा बन जाइए। देव तातला को 416-677-0609 दैट्स 416-677-0609 पर कॉल करें और स्पेशल प्रमोशंस का फायदा उठाइए। भाई हम तो यही चाहेंगे कि हमारे आने वाले शोज में आपका बिजनेस भी शामिल हो। कल्चर ऑफ पंजाब बाय देव तातला।

तुझसे मिलने को कभी हम जो मचल जाते हैं, तो ख्यालों में बहुत दूर निकल जाते हैं। गर वफाओं में सदाकत भी हो और शिद्दत भी, फिर तो एहसास से पत्थर भी पिघल जाते हैं। उसकी आंखों के नशे में हम जब से डूबे, लड़खड़ाते हैं कदम और संभल जाते हैं। बेवफाई का मुझे जब भी ख्याल आता है, अश्क रुखसार पे आंखों से फिसल जाते हैं।

आप सुन रहे हैं कल्चर ऑफ पंजाब। एक्साइटिंग एडवर्टाइजिंग पैकेजेस के लिए कॉल कर सकते हैं 416-677-0609, 416-677-0609।

कई बार सदियां बीत जाती हैं उनको मिले उनको देखे हुए और मन यूं ही उदास खुद से पूछता है सोचता है कि मैंने देखा था उन दिनों में उसे जब वो खिलते गुलाब जैसा था, उसकी पलकों से नींद छनती थी, उसका लहजा शराब जैसा था, उसकी जुल्फों से भीगती थी घटा, उसका रुख महताब जैसा था, लोग पढ़ते थे रुक रुक कर उसे, वो अदब की किताब जैसा था, सारी आंखें थी आईने उसके, वो हकीकत था या किताब जैसा था। ये मगर देर की कहानी है, ये मगर देर का फसाना है, अब तो उसके और मेरे मिलाप के बीच सदियों भरा जमाना है। दिल बार बार खुद से पूछता है कि ना जाने इन दिनों वो कैसा होगा, क्योंकि मैंने देखा था सदियों पहले।

0: रब जी मेरा बिजनेस नहीं है चलता। बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं बनती। बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? देव तातले नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला। भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609, 416-677-0609।

जिन राहों से आप अक्सर गुजरते हैं वो रास्ते भी आपके इतने आदी हो जाते हैं कि अगर आप कुछ दिन वहाँ नहीं जाते तो वो भी उदास हो जाते हैं। फिर हैरान परेशान हुए पूछते हैं औरों से कि अब वो दोनों क्यों नहीं आते। समंदर पूछता है कि अब वो दोनों क्यों नहीं आते। वही दोनों जो भीगी रेत पर एक दूसरे का हाथ थामे दूर तक, कभी हंसते कभी कुछ गुनगुनाते या कभी चुपचाप बैठे दूर उफाक की गूंज में रोपोश होने वाले सूरज को देखते, आंसू बहाते और लौट जाते। समंदर पूछता है कि वो दोनों क्यों नहीं आते, पर समंदर बेखबर अनजान है एक सच्चाई से, और वो क्या है आपके साथ जरूर शेयर करूंगी इस ट्रैक के बाद। विच यू लिसन इन योर वेरी ओन शो कल्चर ऑफ पंजाब ब्रॉट टू यू बाय देवदत्ता।

0: ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: मेरे नबजी, मेरा बिजनेस नहीं चलता। बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं पड़ती। बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
2: ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਵ ਤਾਤਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਐਡ ਚਲਾ। ਬਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਫੋਨ ਕਰ 416-677-0609, 416-677-0609।

0: ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ।
1: You're listening to Culture of Punjab. For exciting advertising packages, call 416-677-0609. 416-677-0609.

इसी के साथ मुझे यानी प्रीत को आज का शो कल्चर ऑफ पंजाब यही खत्म करने की इजाजत दें। बट फॉर एनी बिजनेस क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट देव तातला एट द नंबर 416-677-0609। With that, I sign off. Shall see you again very soon. Till then, goodbye, take care and keep smiling.